कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, हर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का पास है, दिल में की याद है, तू क्यों उदास।

प्यारी प्यारी अगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूएं छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूएं छुपाए मुखाकत नसीब।

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती जलाई है जलाई है। आज राम जन्म की बधाई है।

0: जाओ रे जाओ रे दुख जाओ रे ओ मुझे बाल माँ अब न सताओ रे
1: आओ रे आओ रे आओ आओ रे।

तुम आज किसी कहो जाओगे मुझे बाल माँ अब न सताओ रे आओगे आओगे आओगे मुझे बाल माँ अब न सताओ।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परस जा।

मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा घाव है घटा।